0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte.
1: भाइयो एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस पर हम अपना चिंतन जारी रखते हुए आज इसके चौथे अध्याय पर विचार करेंगे, जो समकालीन दुनिया में कलीसिया की प्रेरिताई को समर्पित है। सर्वप्रथम धर्म सभा हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया अपने में दुनिया के ऊपर या उसके बगल नहीं है, बल्कि उसमें कलमित है। संत अगुस्टिन ने इसे मोंडुस रिकॉन्सिलियातुस एक्लेसिया रेखांकित किया। कलीसिया वह दुनिया है जिसका मेल मिलाप ईश्वर से पहले हो गया है। हम सभी इस पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की भांति हैं, और जो दुनिया की क्षण भंगुरता और सुंदरता को अपने में साझा करते हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि जिस तरह ईश्वर का पुत्र शरीर धारण करते हुए दुनिया को जीवन देने और पिता से मेल कराने आई, उसी भांति कलीसिया दुनिया में ईश्वर के देह धारण की निशानी स्वरूप निवास करती है, जिससे वह उनकी योजना को प्रकट कर सके, जहां हम सभी ईश्वर के संतान एक वृहद मानव परिवार का अंग होने हेतु बुलाए गए हैं। यही कारण है कलीसिया लोगों और संस्कृतियों के मध्य इतिहास में यात्रा करती है, और लोगों के जीवन में यह मिलन उसे इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि उसकी प्रेरिताई का दायरा ऐतिहासिक है, जिसमें इस बात की जिम्मेदारी भी शामिल है कि वह सामाजिक संबंधों का निर्माण किस तरह से करती है। संत पापा ने कहा,
2: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
1: कलीसिया की प्रथम प्रेरिताई लोगों को जीवन के गहरे सवालों के प्रति सतर्क कराना है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति और उसके लक्ष्य से जुड़ी है। इसके साथ ही यह प्रेम और दुखों के अर्थ को समझना है। हर हाल में लाभ कमाने की सोच और सूचनाओं की हेरा फेरी ऐसी जीवन शैली अपनाने को बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जो सिर्फ भौतिक चीजों के उपयोग पर केंद्रित हो, लेकिन हमारा हृदय तो ऊपर की ओर देखने के लिए बनाया गया है। संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्य हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं कि कलीसिया की प्रेरिताई अपने में इस बात की भी परिपूर्णता है, जहां वह इस पृथ्वी रूपी शहर का निर्माण करने में सहयोग करती है। यद्यपि उसके कार्य करने के तरीके और लक्ष्य अपने में मुख्य रूप से एक राजनीति स्तर के नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास और प्रेम का साक्ष्य देने में है, जो न्याय, शांति और भ्रातृत्व के प्रति निष्ठा में बने रहना है। ख्रीस्त की आराधना करते हुए जो अपने में धर्मी हैं, जो अधर्मियों के लिए मरे, विश्वासी कमजोर और गरीबों के शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना ही आश्रित और अन्यायपूर्ण संरचनाओं को जिसका निर्माण किया जाता और उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जाती है। कलीसिया की धर्म विधि ख्रिस्तियों के कार्यों का दिशा निर्देशन करती है जो उन नेक हृदयी लोगों के साथ सहयोग करते हैं जो जनहित की चाह रखते हैं। अतः कलीसिया की उससे बड़ी और कोई इच्छा नहीं है कि वह सबों के हित का ख्याल करे। वह किसी भी ऐसी सरकार के तहत खुद को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके जो व्यक्ति और परिवार के बुनियादी अधिकारों और जन सामान्य की जरूरतों को मान्यता देती हो। संत पापा लियो ने कहा कि सुसमाचार की प्रेरिताई को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने हेतु हर बपतिस्मा प्राप्त के लिए यह जरूरी है कि वह पवित्र आत्मा की कृपा में निष्ठा में सहयोग करे जिससे उसका विश्वास सजीव हो और उसकी अभिव्यक्ति आचरण में निरंतर बनी रहे। वास्तव में जैसे कि धर्म सभा के आचार्यों ने इस बात पर बल दिया, घोषित विश्वास और रोजमर्रे की जिंदगी के बीच का फर्क हमारे समय की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाना चाहिए। गॉडियम एट स्पेस लोक धर्मियों के लिए विशेष प्रेरिताई को अपने में समाहित करता है जो बपतिस्मा के आधार पर दुनिया को ख्रिस्त के मनोभावों और सुसमाचार की दृष्टि से साराबोर करना है। इस कार्य के लिए मुख्य परिस्थिति जिसे हम पुरोहितिक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं निसंदेह परिवार और कार्यस्थल हैं, यद्यपि यह जीवन के हर क्षेत्र को अपने में समाहित करता है। संत पापा लियो ने कहा कि अंततः कलीसिया सदैव उन बातों के प्रति सजग है जो समाज में घटित और विकसित हो रही हैं।
2: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione.
1: यह सारी ईश प्रजा का कर्तव्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे इस बात के संबंध में आत्म निरीक्षण करें कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे समय में विचारणीय हैं, और इस संदर्भ में उन्हें चाहिए कि वे ईश वचन और कलीसिया की परंपरा को ध्यान में रखें। यह हमसे संतुलित दिमागी स्थिति की मांग करती है जहां हम दुनिया को सकारात्मक ज्योति में देखते हैं और उसे सुसमाचार संदेश के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ख्रिस्तीय धर्म को आकर्षक बनाने का तरीका निश्चित रूप में इसके संदेश को हल्का करना या इसकी मांगों को नरमी में देखना नहीं है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि कलीसिया इतिहास के संग यात्राएं करती है, कलीसिया का एकमात्र लक्ष्य है कि वह ईश्वर के राज्य की स्थापना करे और सारी मानवता के लिए मुक्ति को लाए। वह व्यक्तिगत पवित्रता और भ्रातृत्व प्रेम में बने रहते हुए इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। संत पापा पॉल छाटवे ने इसके संबंध में लिखा है, पवित्रता के इस चिन्ह बिना हमारे वचनों से वर्तमान मानव हृदय का स्पर्श करना कठिन होगा। यह हमारे लिए व्यर्थ और निष्फल कार्य की जोखिम होगी। अतः आइए हम पवित्र आत्मा के कार्य हेतु अपने को खुला रखें। वे हमें पवित्रता और करुणा में जीवन जीने को मदद करें जिससे दुनिया विश्वास करे और आशा में बनी रहे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 25 से 27 अक्टूबर को अंतरधार्मिक शांति प्रार्थना की 40वीं वार्षिक सभा में भाग लेंगे, जो असीसी में आयोजित है और जिसकी शुरुआत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की है। 40 साल पहले 27 अक्टूबर 1986 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मध्य इटली के असीसी शहर में शांति के लिए ऐतिहासिक विश्व प्रार्थना दिवस में भाग लिया था। इतिहास में पहली बार पोप ने दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया था। उस सभा से प्रेरित होने वालों में संत इजिदियो समुदाय भी है, जो एक कैथोलिक लोकधर्मी संगठन है और जो तब से हर साल पूरे यूरोप एवं उसके बाहर असीसी की आत्मा के नाम से प्रचलित इस सभा को बढ़ावा दे रहा है। इस साल के कार्यक्रम में पोप लियो 14वें भी शामिल होंगे। स्थानीय धर्माध्यक्ष फेलिचे एक्रोका ने कहा, हम संत पिता के असीसी लौटने से सचमुच बहुत खुश हैं। हमें पक्का यकीन है कि पोप की उपस्थिति बाकी सभी धार्मिक नेताओं के साथ हर तरह की हिंसा के खिलाफ हमारी साझा यात्रा को मजबूत कर सकेगी। 2026 की प्रार्थना सभा को सोमवार को संचार विभाग के मुख्यालय में पेश किया गया। कार्यक्रम को संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को इम्पालियाजो ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया, असीसी में अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत के लिए एक नया एवं रचनात्मक नजरिया उत्पन्न हुआ है। इम्पालियाजो ने कहा, आज दुनिया बहुत डरी हुई, डरावनी और बिखरी हुई है, राष्ट्रवाद एवं नस्लवाद के शिकार है, जिससे पुनः एक बार जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर दुनिया में आध्यात्मिक एकता नहीं है तो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक होना और खुद को सबका भाई बहन समझना मुश्किल होगा, जैसा कि पोप फ्रांसिस कहा करते थे। 2026 के असीसी की सभा का आदर्श वाक्य है, बिना हथियार वाले एवं निरस्त्रीकृत शांति, जिससे पोप लियो के शब्दों से लिया गया है। इस कार्यक्रम में 53 देशों के धर्मों, संस्कृति और संस्थानों के कुल 384 प्रतिनिधि शामिल होंगे। संत पापा लियो 14वें कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को असीसी में होंगे। वे महागिरजाघर में क्रिस्त समुदाय के साथ शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इम्पालियाजो ने कहा कि संत फ्रांसिस महागिरजाघर के बाहर पोप लियो 14वें दुनिया को शांति का संदेश देंगे, जो अत्यंत जरूरी है। आम दर्शन समारोह में पोप लियो 14वें ने रोजरी माला विनती करने के अपने निमंत्रण को दोहराया, जो उन्होंने लूर्द में माता मरियम से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। खासकर अक्टूबर के महीने में पोप लियो ने बुधवार को कहा, जीवन की मुश्किलों के बीच एक सुरक्षित पनाहगार पुकारी जाने वाली माता मरियम से प्रार्थना करें, जो युद्ध से घायल दुनिया के लिए सांत्वना के स्रोत हैं। उन्होंने अपनी यह अपील बुधवार को दोहराई, जब कलीसिया रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। पुर्तगाली भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने ब्राजील की संरक्षिका अपरिजिदा की माता मरियम को याद किया, जिनका पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, मैं आपको और आपके परिवारों को उनकी ममता भरी प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। हमारी माता मरियम हमेशा आप पर नजर रखें। चीनी बोलने वाले तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने मरियम को मुश्किल और दुखद पलों में शरण एवं बल बताया। पोप लियो 14वें ने वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों को वैटिकन की कला को बचाने में मदद करने हेतु उनके उदार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें खुद को सुंदरता के लिए खोलने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तकनीकी के दबदबे वाले इस युग में, जिसमें दक्षता एवं लाभ को ही अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, यह बहुत जरूरी है कि हम चिंतन की भावना को बढ़ावा दें और सुंदरता को समय एवं जगह दें। पोप ने यह बात बुधवार को उस समय कही, जब वे आम दर्शन समारोह से पहले अमेरिका के लुइसियाना के वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों से मिले। पोप ने कहा, चिंतन की भावना मानवता, खासकर युवाओं को बहुत मदद करेगी, न सिर्फ यह जानने में कि कला मानव की आत्मा की गहराई को ऊपर उठाने और दिखाने की कितनी काबिलियत रखती है और ईश्वर के प्रति हमारा खुलापन क्या है, बल्कि यह समझने में भी कि सच्ची संतुष्टि के लिए आत्मदान भी जरूरी है। उन्होंने चिंतन को सुंदरता के ईश्वर से मिलने का खूबसूरत अवसर कहा और संरक्षकों को प्रोत्साहन दिया कि वे खुद को इस सुंदरता के लिए खोलें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करें। उन्होंने आगे कहा,
कला और सुंदरता के लिए प्यार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखने की इच्छा ही संरक्षकों को रोम लाती है। उन्होंने माना कि वे तीर्थयात्रियों के तौर पर भी रोम आते हैं और उम्मीद जताई कि प्रेरितों की कब्रों पर प्रार्थना में बिताया गया उनका समय संत पेतरुस के उत्तराधिकारी और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि संरक्षक के तौर पर आपने खुद अनुभव किया होगा कि सुंदरता में इंसान के दिल की सबसे अच्छी इच्छाओं को जगाने की ताकत होती है, जो हमें खुद से आगे बुलाती और हमारी आत्माओं को ईश्वर के वरदानों की उदारता के लिए खोलती है। इस संदर्भ में उन्होंने वैटिकन म्यूजियम की कला को बनाए रखने के काम में लुइसियाना के कला संरक्षकों को उनके दिल खोलकर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बॉम्बे महाधर्म प्रांत के सहायक धर्मदर्श बिशप डोमिनिक सावियो फर्नांडिस ने देश एवं देश के युवाओं के लिए प्रार्थना की एक आवश्यक अपील जारी की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं बड़े भारी दिल एवं एक अत्यंत जरूरी अपील के साथ आया हूँ। कृपया हमारे देश भारत के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें और विशेषकर हमारे युवाओं के लिए, जो न्याय एवं अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ समय से हम प्रदर्शनों को बढ़ते देख रहे हैं। छात्रों, युवाओं, जेनजी, पत्रकार, नागरिक समाज और कई आम नागरिकों का दल। इन प्रदर्शनों की शुरुआत उन चिंताओं के बीच हुई है, जैसे नीट पेपर लीक, चुनावी नियम और SIR आदि। रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम चुनावी सूची से काट दिया गया है। बहिष्कार का यह पैमाना नागरिकों में बहुत अधिक चिंता उत्पन्न कर रहा है कि क्या सभी सक्षम नागरिक वोट कर पाएंगे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte.
1: भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय के धर्म सिद्धांत गौडियम एट स्पेस पर हम अपना चिंतन जारी रखते हुए आज इसके चौथे अध्याय पर विचार करेंगे, जो समकालीन दुनिया में कलीसिया की प्रेरिताई को समर्पित है। सर्वप्रथम धर्म सभा हमें इस बात की याद दिलाती है कि कलीसिया अपने में दुनिया के ऊपर या उसके बगल नहीं है, बल्कि उसमें कलमित है। संत अगुस्टिन ने इसे मोंडस रिकॉन्सिलियातुस एक्लेसिया रेखांकित किया। कलीसिया वह दुनिया है जिसका मेल मिलाप ईश्वर से पहले हो गया है। हम सभी इस पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों की भांति हैं, और जो दुनिया की क्षण भंगुरता और सुंदरता को अपने में साझा करते हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि जिस तरह ईश्वर का पुत्र शरीर धारण करते हुए दुनिया को जीवन देने और पिता से मेल कराने आई, उसी भांति कलीसिया दुनिया में ईश्वर के देह धारण की निशानी स्वरूप निवास करती है, जिससे वह उनकी योजना को प्रकट कर सके, जहां हम सभी ईश्वर के संतान एक वृहद मानव परिवार का अंग होने हेतु बुलाए गए हैं। यही कारण है कलीसिया लोगों और संस्कृतियों के मध्य इतिहास में यात्रा करती है, और लोगों के जीवन में यह मिलन उसे इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप में समझने को मदद करती है कि उसकी प्रेरिताई का दायरा ऐतिहासिक है, जिसमें इस बात की जिम्मेदारी भी शामिल है कि वह सामाजिक संबंधों का निर्माण किस तरह से करती है। संत पापा ने कहा,
2: La prima missione della chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
1: कलीसिया की प्रथम प्रेरिताई लोगों को जीवन के गहरे सवालों के प्रति सतर्क कराना है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति और उसके लक्ष्य से जुड़ी है। इसके साथ ही यह प्रेम और दुखों के अर्थ को समझना है। हर हाल में लाभ कमाने की सोच और सूचनाओं की हेरा फेरी ऐसी जीवन शैली अपनाने को बहुत ज्यादा दबाव डालती है, जो सिर्फ भौतिक चीजों के उपयोग पर केंद्रित हो, लेकिन हमारा हृदय तो ऊपर की ओर देखने के लिए बनाया गया है। संत पापा ने कहा, धर्म सभा के आचार्य हमें इस बात की भी याद दिलाते हैं कि कलीसिया की प्रेरिताई अपने में इस बात की भी परिपूर्णता है, जहां वह इस पृथ्वी रूपी शहर का निर्माण करने में सहयोग करती है, यद्यपि उसके कार्य करने के तरीके और लक्ष्य अपने में मुख्य रूप से एक राजनीति स्तर के नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास और प्रेम का साक्ष्य देने में है, जो न्याय, शांति और भ्रातृत्व के प्रति निष्ठा में बने रहना है। ख्रीस्त की आराधना करते हुए जो अपने में धर्मी हैं, जो अधर्मियों के लिए मरे, विश्वासी कमजोर और गरीबों के शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना ही आश्रित और अन्यायपूर्ण संरचनाओं को जिसका निर्माण किया जाता और उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जाती है। कलीसिया की धर्म विधि ख्रिस्तियों के कार्यों का दिशा निर्देशन करती है जो उन नेक हृदय लोगों के साथ सहयोग करते हैं जो जनहित की चाह रखते हैं। अतः कलीसिया की उससे बड़ी और कोई इच्छा नहीं है कि वह सबों के हित का ख्याल करे। वह किसी भी ऐसी सरकार के तहत खुद को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके जो व्यक्ति और परिवार के बुनियादी अधिकारों और जन सामान्य की जरूरतों को मान्यता देती हो। संत पापा लियो ने कहा कि सुसमाचार की प्रेरिताई को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने हेतु हर बपतिस्मा प्राप्त के लिए यह जरूरी है कि वह पवित्र आत्मा की कृपा में निष्ठा में सहयोग करे जिससे उसका विश्वास सजीव हो और उसकी अभिव्यक्ति आचरण में निरंतर बनी रहे। वास्तव में जैसे कि धर्म सभा के आचार्यों ने इस बात पर बल दिया, घोषित विश्वास और रोजमर्रे की जिंदगी के बीच का फर्क हमारे समय की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाना चाहिए। गॉडियम एट स्पेस लोक धर्मियों के लिए विशेष प्रेरिताई को अपने में समाहित करता है जो बपतिस्मा के आधार पर दुनिया को ख्रिस्त के मनोभावों और सुसमाचार की दृष्टि से साराबोर करना है। इस कार्य के लिए मुख्य परिस्थिति जिसे हम पुरोहितिक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं निसंदेह परिवार और कार्यस्थल हैं, यद्यपि यह जीवन के हर क्षेत्र को अपने में समाहित करता है। संत पापा लियो ने कहा कि अंततः कलीसिया सदैव उन बातों के प्रति सजग है जो समाज में घटित और विकसित हो रही हैं।
2: È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione.
1: यह सारी ईश प्रजा का कर्तव्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे इस बात के संबंध में आत्म निरीक्षण करें कि वे कौन सी बातें हैं जो हमारे समय में विचारणीय हैं, और इस संदर्भ में उन्हें चाहिए कि वे ईश वचन और कलीसिया की परंपरा को ध्यान में रखें। यह हमसे संतुलित दिमागी स्थिति की मांग करती है जहां हम दुनिया को सकारात्मक ज्योति में देखते हैं और उसे सुसमाचार संदेश के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ख्रिस्तीय धर्म को आकर्षक बनाने का तरीका निश्चित रूप में इसके संदेश को हल्का करना या इसकी मांगों को नरमी में देखना नहीं है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि जैसे कि कलीसिया इतिहास के संग यात्राएं करती है, कलीसिया का एकमात्र लक्ष्य है कि वह ईश्वर के राज्य की स्थापना करे और सारी मानवता के लिए मुक्ति को लाए। वह व्यक्तिगत पवित्रता और भ्रातृत्व प्रेम में बने रहते हुए इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। संत पापा पॉल छाटवे ने इसके संबंध में लिखा है, पवित्रता के इस चिन्ह बिना हमारे वचनों से वर्तमान मानव हृदय का स्पर्श करना कठिन होगा। यह हमारे लिए व्यर्थ और निष्फल कार्य की जोखिम होगी। अतः आइए हम पवित्र आत्मा के कार्य हेतु अपने को खुला रखें। वे हमें पवित्रता और करुणा में जीवन जीने को मदद करें जिससे दुनिया विश्वास करे और आशा में बनी रहे। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 25 से 27 अक्टूबर को अंतरधार्मिक शांति प्रार्थना की 40वीं वार्षिक सभा में भाग लेंगे, जो असीसी में आयोजित है और जिसकी शुरुआत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की है। 40 साल पहले 27 अक्टूबर 1986 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने मध्य इटली के असीसी शहर में शांति के लिए ऐतिहासिक विश्व प्रार्थना दिवस में भाग लिया था। इतिहास में पहली बार पोप ने दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शांति के लिए एक साथ प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया था। उस सभा से प्रेरित होने वालों में संत इजिदियो समुदाय भी है, जो एक कैथोलिक लोकधर्मी संगठन है और जो तब से हर साल पूरे यूरोप एवं उसके बाहर असीसी की आत्मा के नाम से प्रचलित इस सभा को बढ़ावा दे रहा है। इस साल के कार्यक्रम में पोप लियो 14वें भी शामिल होंगे। स्थानीय धर्माध्यक्ष फेलिचे एक्रोका ने कहा, हम संत पिता के असीसी लौटने से सचमुच बहुत खुश हैं। हमें पक्का यकीन है कि पोप की उपस्थिति बाकी सभी धार्मिक नेताओं के साथ हर तरह की हिंसा के खिलाफ हमारी साझा यात्रा को मजबूत कर सकेगी। 2026 की प्रार्थना सभा को सोमवार को संचार विभाग के मुख्यालय में पेश किया गया। कार्यक्रम को संत इजिदियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को इम्पालियाजो ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया, असीसी में अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत के लिए एक नया एवं रचनात्मक नजरिया उत्पन्न हुआ है। इम्पालियाजो ने कहा, आज दुनिया बहुत डरी हुई, डरावनी और बिखरी हुई है, राष्ट्रवाद एवं नस्लवाद के शिकार है, जिससे पुनः एक बार जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर दुनिया में आध्यात्मिक एकता नहीं है तो पुरुषों और महिलाओं के लिए एक होना और खुद को सबका भाई बहन समझना मुश्किल होगा, जैसा कि पोप फ्रांसिस कहा करते थे। 2026 के असीसी की सभा का आदर्श वाक्य है, बिना हथियार वाले एवं निरस्त्रीकृत शांति, जिससे पोप लियो के शब्दों से लिया गया है। इस कार्यक्रम में 53 देशों के धर्मों, संस्कृति और संस्थानों के कुल 384 प्रतिनिधि शामिल होंगे। संत पापा लियो 14वें कार्यक्रम के अंतिम दिन 27 अक्टूबर को असीसी में होंगे। वे महागिरजा घर में क्रिस्त समुदाय के साथ शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद इम्पालियाजो ने कहा कि संत फ्रांसिस महागिरजा घर के बाहर पोप लियो 14वें दुनिया को शांति का संदेश देंगे, जो अत्यंत जरूरी है। आम दर्शन समारोह में पोप लियो 14वें ने रोजरी माला विनती करने के अपने निमंत्रण को दोहराया, जो उन्होंने लूर्द में माता मरियम से दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। खासकर अक्टूबर के महीने में पोप लियो ने बुधवार को कहा, जीवन की मुश्किलों के बीच एक सुरक्षित पनाहगार पुकारी जाने वाली माता मरियम से प्रार्थना करें, जो युद्ध से घायल दुनिया के लिए सांत्वना के स्रोत है। उन्होंने अपनी यह अपील बुधवार को दोहराई, जब कलीसिया रोजरी की माता मरियम का पर्व मनाती है। पुर्तगाली भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने ब्राजील की संरक्षिका अपरिजिदा की माता मरियम को याद किया, जिनका पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। उन्होंने कहा, मैं आपको और आपके परिवारों को उनकी ममता भरी प्रार्थना को सपोर्ट करता हूँ। हमारी माता मरियम हमेशा आप पर नजर रखें। चीनी बोलने वाले तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए पोप ने मरियम को मुश्किल और दुखद पलों में शरण एवं बल बताया। पोप लियो 14वें ने वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों को वैटिकन की कला को बचाने में मदद करने हेतु उनके उदार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें खुद को सुंदरता के लिए खोलने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। तकनीकी के दबदबे वाले इस युग में, जिसमें दक्षता एवं लाभ को ही अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, यह बहुत जरूरी है कि हम चिंतन की भावना को बढ़ावा दें और सुंदरता को समय एवं जगह दें। पोप ने यह बात बुधवार को उस समय कही, जब वे आम दर्शन समारोह से पहले अमेरिका के लुइसियाना के वैटिकन संग्रहालय में कला के संरक्षकों से मिले। पोप ने कहा, चिंतन की भावना मानवता, खासकर युवाओं को बहुत मदद करेगी, न सिर्फ यह जानने में कि कला मानव की आत्मा की गहराई को ऊपर उठाने और दिखाने की कितनी काबिलियत रखती है और ईश्वर के प्रति हमारा खुलापन क्या है, बल्कि यह समझने में भी कि सच्ची संतुष्टि के लिए आत्मदान भी जरूरी है। उन्होंने चिंतन को सुंदरता के ईश्वर से मिलने का खूबसूरत अवसर कहा और संरक्षकों को प्रोत्साहन दिया कि वे खुद को इस सुंदरता के लिए खोलें और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के तरीकों पर विचार करें।
उन्होंने आगे कहा, कला और सुंदरता के लिए प्यार और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखने की इच्छा ही संरक्षकों को रोम लाती है। उन्होंने माना कि वे तीर्थयात्रियों के तौर पर भी रोम आते हैं और उम्मीद जताई कि प्रेरितों की कब्रों पर प्रार्थना में बिताया गया उनका समय संत पेतरुस के उत्तराधिकारी और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ उनके रिश्तों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि संरक्षक के तौर पर आपने खुद अनुभव किया होगा कि सुंदरता में इंसान के दिल की सबसे अच्छी इच्छाओं को जगाने की ताकत होती है, जो हमें खुद से आगे बुलाती और हमारी आत्माओं को ईश्वर के वरदानों की उदारता के लिए खोलती है। इस संदर्भ में उन्होंने वैटिकन म्यूजियम की कला को बनाए रखने के काम में लुइसियाना के कला संरक्षकों को उनके दिल खोलकर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बॉम्बे महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष बिशप डोमिनिक सावियो फर्नांडिस ने देश एवं देश के युवाओं के लिए प्रार्थना की एक आवश्यक अपील जारी की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं बड़े भारी दिल एवं एक अत्यंत जरूरी अपील के साथ आया हूँ। कृपया हमारे देश भारत के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें और विशेषकर हमारे युवाओं के लिए, जो न्याय एवं अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ समय से हम प्रदर्शनों को बढ़ते देख रहे हैं। छात्रों, युवाओं, जेनजी, पत्रकार, नागरिक समाज और कई आम नागरिकों का दल। इन प्रदर्शनों की शुरुआत उन चिंताओं के बीच हुई है, जैसे नीट पेपर लीक, चुनावी नियम और SIR आदि। रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम चुनावी सूची से काट दिया गया है। बहिष्कार का यह पैमाना नागरिकों में बहुत अधिक चिंता उत्पन्न कर रहा है कि क्या सभी सक्षम नागरिक वोट कर पाएंगे, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के प्रथम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी का वे अवश्य आनंद लें, किंतु अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को कदापि न भूलें। वस्तुतः 12वां अध्याय उपसंहार से पहले उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का प्रयास किया है। वह याद दिलाता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन से आता है, शेष कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि वृद्धावस्था आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की ताकत और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सच तो यह है कि सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत एवं अनादि ईश्वर की सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। जवानी में सारी ताकतें अधिक क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मज़ा ले पाते हैं। इसीलिए जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि यह जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, युवावस्था में विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दे तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने से बड़ों का

आगे 12वें अध्याय के अंतिम 4 पदों में भी उपदेशक इसी विचार को जारी रखते हुए 4थे और 5वें पदों में कहता है, उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे, उस समय से पहले जब ऊंचाई से चढ़ने पर डर लगने लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। श्रोताओं, इसमें संदेह नहीं कि उक्त पदों में उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है, जब शरीर को संभालने वाले हाथ और बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, चबाना मुश्किल हो जाता है, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है और इंसान आसानी से जाग जाता है, उसे चिड़िया के चहचहाने के लिए रुकना नहीं पड़ता, गाने बजाने में अब अधिक मजा नहीं आता और संगीत की आवाज धीमी पड़ जाती है, जिंदगी में डर बढ़ जाता है, ऊंचाई से डर और रास्ते में आने वाले खतरों से डर लगने लगता है, बादाम के पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं और उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं और चटनी में कोई रुचि नहीं रह जाती, जो लोग कभी फुर्तीले थे वे कमजोर हो जाते हैं, छोटी सी चीज भी बोझ लगने लगती है, जीवन का जोश और सारी इच्छाएं खत्म सी हो जाती हैं, यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है, वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से, यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। श्रोताओं, इस स्थल पर श्रोताओं को याद दिला दें कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहता। फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सुलेमान सही नतीजे पर पहुंचा है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमने लगते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होती है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और कहीं भी इतने अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और इस प्रकार यह उस भयानक भविष्य पर साफ रोशनी डालने का रास्ता खोलती है जो ख्रिस्तीय सुसमाचार के खुलासे से मिलती है। आगे 12वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में उपदेशक कहता है, उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओं, जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर उपदेशक सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद रखें। वस्तुतः चांदी और सोना की यह तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। श्रोताओं, जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को
आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को सियेरा लियोन के राष्ट्रपति श्री जूलियस मादा बियो से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मॉन्सिनियोर मिहाय तब्लाज से मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान उन्होंने अच्छे द्विपक्षीय संबंधों एवं स्थानीय कलीसिया के द्वारा समाज को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। बयान में कहा गया कि आप्रवासन, पर्यावरण एवं खाद्य संबंधी आपात स्थिति के साथ साथ अलग अलग सामाजिक चुनौतियों पर भी बातचीत हुई, जिसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा शांति स्थापित करने तथा शिक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया गया और अंत में कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14वें ने दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को बढ़ावा दिया है कि वे पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया के प्रकाशन के बाद 10 सालों में उनकी कलीसियाओं में जो कुछ भी सामने आया है उसे साझा करें और उनसे उन सवालों और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की अपील की है जिनका सामना आज परिवार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को सभा के आरंभ में पोप लियो 14वें ने कहा, परिवार में प्यार पर पोप फ्रांसिस के प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया के प्रकाशन के 10 साल बाद अब समय आ गया है कि इस दस्तावेज से जो कुछ भी सामने आया है उसे दुनिया भर की कलीसियाओं को साझा करें ताकि कलीसिया आज जिन चुनौतियों और कमजोरियों का सामना कर रही है उनमें परिवारों का साथ देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत कर सके। उन्होंने सभा के शुरुआती भाषण में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कलीसियाओं और अलग अलग सांस्कृतिक माहौल से जो कहानियां लाते हैं उनसे इन 10 सालों की एक साझा कहानी धीरे धीरे आकार लेगी जो खुशी और उम्मीद से भरी होगी और इससे हम बाकी मुश्किलों एवं परेशानियों का ईमानदारी से सामना कर पाएंगे। पोप लियो ने 19 मार्च 2026 को अमोरिस लेतिसिया की 10वीं सालगिरह के मौके पर वैटिकन में पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग का आह्वान किया था। यह कार्यक्रम 7 से 14 अक्टूबर तक पॉल शस्टम सभागार में चल रहा है, जिसमें पूर्ण सत्र, सामूहिक कार्य, प्रार्थना एवं कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। सभा पोप लियो 14वें द्वारा अर्पित ख्रिस्त्याग के साथ समाप्त होगी और इन दिनों में जो सामने आया है उनसे एक सारांश रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पोप ने कहा कि उनके पूर्वाधिकारियों और कलीसिया ने परिवार एवं विवाह के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जारी रखा। जब महासभा के धर्माचार्यों ने आधुनिक दुनिया में कलीसिया के प्रेरित संविधान गाउडियम एट स्पेस के भीतर विवाह एवं परिवार की गरिमा को रखा, उन्होंने माना कि पारिवारिक जीवन हमारे समय के महान सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों में प्रवेश का एक विशेषाधिकार प्राप्त बिंदु प्रदान करता है जिसमें लोगों के बीच शांति को बढ़ावा देने का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, आज इन सवालों का एक दूसरे पर निर्भर होना और भी साफ हो गया है। पोप ने समझाया कि परिवार एक ऐसे दृष्टिकोण की कुंजी है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों को एक साथ रखता है और ख्रिस्त में एक विश्वव्यापी भाईचारे की खोज से प्रेरित होता है, इसलिए मीटिंग में एकत्रित हुए लोगों की एक खास जिम्मेदारी है। पोप ने गौर किया कि कलीसिया ने परिवार और विवाह के प्रति अपनी प्रेरित चिंता में जिस रास्ते पर चलना शुरू की है उसमें अमोरिस लेतिसिया एक अहम पड़ाव है। उन्होंने सभी लोगों को इस दस्तावेज के नतीजे में पिछले 10 सालों में स्थानीय कलीसियाओं के सामने आई कहानियों, नतीजों और सवालों को साझा करने का प्रोत्साहन दिया। इस सभा के लिए 19 मार्च को अपने संदेश में पोप ने इस बात पर जोर दिया था कि असल में ऐसी जगह हैं और हालात हैं जहां कलीसिया सिर्फ लोक धर्मियों और खासकर परिवारों के माध्यम से पृथ्वी के नमक बन सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अमोरिस लेतिसिया हमें इस काम और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित करता है। परिवार खुद अपने जीवन के आम ताने बाने में प्यार और निष्ठा, देखभाल और माफी, बच्चों की पढ़ाई, विश्वास को हस्तांतरित करने की अपनी कोशिशों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर ध्यान देने और कई तरीकों से अपने समुदायों तथा समाज की सेवा करके कलीसिया के मिशन में हिस्सा लेते हैं।
इन सभी तरीकों से परिवार सुसमाचार की गवाही देते और कलीसिया के जीवन एवं मिशन में योगदान देते हैं। पोप ने आग्रह किया, पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो हुआ है उसे ध्यान से देखने से हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है कि मसीह इन सालों में अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, और यह भी कहा कि इससे यह देखने में भी मदद मिल सकती है कि उनकी आत्मा आज कलीसिया को कहाँ ले जा रही है। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलाघर 8 से 10 अक्टूबर तक इस्लामाबाद जा रहे हैं। वे वहाँ राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों तथा देश के धर्मदर्शों से मिलेंगे और फैसल मस्जिद जाएंगे। महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड का पाकिस्तान दौरा आज 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और शनिवार 10 अक्टूबर तक चलेगा। महाधर्मदर्श वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। साथ ही वे शांति और सहयोग के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना चाहते हैं। वैटिकन राज्य सचिव के एक्स अकाउंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार महाधर्मदर्श गलाघर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मिलेंगे। वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को अपने दौरे के अंतिम दिन वे इस्लामाबाद में फातिमा की माता मरियम के गिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे फैसल मस्जिद जाएंगे और धार्मिक नेताओं से मिलेंगे। पोप लियो 14वें ने सिस्टर मेरी तेरेस बैरन को सुसमाचार प्रचार विभाग का सहायक सचिव और परमधम पीठे मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अपनी इस नई जिम्मेदारी को 4 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। वे वर्तमान में मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ अपोसल्स के सुपीरियर जनरल हैं। और आज के कार्यक्रम के अनुसार संत पापा लियो 14वें शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए परमधम पीठे विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

अपनी जवानी के दिनों में सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे, मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला, उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे, उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती हैं वे धुंधली हो जाएंगी। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के प्रथम 3 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों के पाठ से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भी उपदेशक सुलेमान अपने परामर्श को जारी रखते हुए युवकों का आह्वान करता है कि जवानी का वे अवश्य आनंद लें, किंतु अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को कदापि न भूलें। वस्तुतः 12वां अध्याय उपसंहार से पहले उपदेशक ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, जिसमें जीवन के यथार्थ अर्थ को उपदेशक ने समझाने का प्रयास किया है। वह याद दिलाता है कि जीवन का यथार्थ आनंद और सुख अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करने और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए जीवन यापन से आता है, शेष कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए मनुष्य समय रहते अपने आप को सुधार ले, वह अपने जीवन के अच्छे दिनों का सदुपयोग करे। वह सावधान करता है, युवा शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक वह उसे भले कर्मों में लगाए, क्योंकि वृद्धावस्था आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर कांपने लगेगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, पैरों में चलने की ताकत और हाथों में काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सच तो यह है कि सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि युवा व्यक्ति प्रायः अनंत जीवन और अनंत एवं अनादि ईश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। जवानी में सारी ताकतें अधिक क्रियाशील और जोशीली होती हैं और युवा जीवन का बेहतर मजा ले पाते हैं। इसीलिए जवानी में युवाओं को यह समझाना प्रायः मुश्किल हो जाता है कि यह जिंदगी हमेशा रहने की बस एक छोटी सी शुरुआत है। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं, युवावस्था में विश्वास, उम्मीद और प्यार अपने सबसे अच्छे रूप में, सबसे अधिक जोश में और सबसे कम मुश्किल हालातों में होते हैं। तथापि जीवन की सच्चाई पर यदि युवा ध्यान दे तो यौवन भी टिका नहीं रहता, वह भी आता और चला जाता है। इसलिए उपदेशक का परामर्श है कि यौवन के चले जाने से पहले व्यक्ति विश्वास को सुदृढ़ करे, आशावान रहे, प्रार्थना करे, प्रेम से रहे, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करे, तभी उसके लिए वृद्धावस्था और दुर्बलता के दिन आसान बन जाएंगे।

आगे 12वें अध्याय के अंतिम 4 पदों में भी उपदेशक इसी विचार को जारी रखते हुए 4थे और 5वें पदों में कहता है, उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे, उस समय से पहले जब ऊंचाई से चढ़ने पर डर लगने लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। श्रोताओं, इसमें संदेह नहीं कि उक्त पदों में उपदेशक ने ढलती उम्र के प्रभाव का काव्यात्मक वर्णन किया है, जब शरीर को संभालने वाले हाथ और बाजू कांपने लगते हैं, पैर और घुटने कमजोर होकर झुकने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं, चबाना मुश्किल हो जाता है, आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, नींद आना मुश्किल हो जाता है और इंसान आसानी से जाग जाता है, उसे चिड़िया के चहचहाने के लिए रुकना नहीं पड़ता, गाने बजाने में अब अधिक मजा नहीं आता और संगीत की आवाज धीमी पड़ जाती है, जिंदगी में डर बढ़ जाता है, ऊंचाई से डर और रास्ते में आने वाले खतरों से डर लगने लगता है, बादाम के पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं और उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं और चटनी में कोई रुचि नहीं रह जाती, जो लोग कभी फुर्तीले थे वे कमजोर हो जाते हैं, छोटी सी चीज भी बोझ लगने लगती है, जीवन का जोश और सारी इच्छाएं खत्म सी हो जाती हैं, यह सब इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने वाला होता है, वह अपने सदैव रहने वाले धाम की ओर अभिमुख होता है। श्रोताओं, यहां उपदेशक ने इंसान की ढलती उम्र को व्यर्थ नहीं कहा है, उसे व्यर्थता से नहीं जोड़ा है, अपितु उसने बढ़ती उम्र को हमेशा की जिंदगी से, यानी कि अनंत जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। श्रोताओं, इस स्थल पर श्रोताओं को याद दिला दें कि बाइबल धर्म ग्रंथ का प्राचीन व्यवस्थान आम तौर पर इस जीवन के बाद मानव जीवन और उसकी परिस्थितियों के विषय में सुनिश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहता, फिर भी अपनी गहरी खोजबीन से उपदेशक सुलेमान सही नतीजे पर पहुंचा है कि इस जिंदगी के बाद इंसान अपने हमेशा के घर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शोक मनाने वाले सड़कों पर घूमने लगते हैं। अस्तु श्रोताओं, यह अद्भुत किताब यानी कि उपदेशक ग्रंथ ऐसे सच का रहस्य खोलते हुए समाप्त होती है जिसे प्राचीन व्यवस्थान में और कहीं भी इतने अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, और इस प्रकार यह उस भयानक भविष्य पर साफ रोशनी डालने का रास्ता खोलती है जो ख्रिस्तीय सुसमाचार के खुलासे से मिलती है। आगे 12वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में उपदेशक कहता है, उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। श्रोताओं, जिंदगी के अंत को बताने के लिए कई तरह की उपमाओं का इस्तेमाल कर उपदेशक सुलेमान फिर से अपने पाठकों और श्रोताओं से गुजारिश करता है कि वे इस जिंदगी के खत्म होने से पहले ईश्वर को याद रखें। वस्तुतः चांदी और सोना की यह तस्वीर जिंदगी की कीमत और जिंदगी के अंत के उस दृश्य को दिखाती है जिसके टुकड़ों को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता। श्रोताओं, जीवन के अंत में मिट्टी वापस धरती में मिल जाएगी जैसे वह पहले थी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है, और तब वह क्षण दूर नहीं जब मनुष्य को
आदि और अनादि ईश्वर तथा अनंत काल के प्रति जवाब देना होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को सियेरा लियोन के राष्ट्रपति श्री जूलियस मादा बियो से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन एवं वैटिकन विदेश उप सचिव मॉन्सिनियोर मिहाय तबलाज से मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान उन्होंने अच्छे द्विपक्षीय संबंधों एवं स्थानीय कलीसिया के द्वारा समाज को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। बयान में कहा गया कि आप्रवासन, पर्यावरण एवं खाद्य संबंधी आपात स्थिति के साथ साथ अलग अलग सामाजिक चुनौतियों पर भी बातचीत हुई, जिसमें युवाओं पर खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा शांति स्थापित करने तथा शिक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के महत्व पर भी जोर दिया गया और अंत में कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14वें ने दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को बढ़ावा दिया है कि वे पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया के प्रकाशन के बाद 10 सालों में उनकी कलीसियाओं में जो कुछ भी सामने आया है उसे साझा करें और उनसे उन सवालों और मुश्किलों का हिम्मत से सामना करने की अपील की है जिनका सामना आज परिवार कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को सभा के आरंभ में पोप लियो 14वें ने कहा, परिवार में प्यार पर पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया के प्रकाशन के 10 साल बाद अब समय आ गया है कि इस दस्तावेज से जो कुछ भी सामने आया है उसे दुनिया भर की कलीसियाओं को साझा करें ताकि कलीसिया आज जिन चुनौतियों और कमजोरियों का सामना कर रही है उनमें परिवारों का साथ देने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत कर सके। उन्होंने सभा के शुरुआती भाषण में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कलीसियाओं और अलग अलग सांस्कृतिक माहौल से जो कहानियां लाते हैं उनसे इन 10 सालों की एक साझा कहानी धीरे धीरे आकार लेगी जो खुशी और उम्मीद से भरी होगी और इससे हम बाकी मुश्किलों एवं परेशानियों का ईमानदारी से सामना कर पाएंगे। पोप लियो ने 19 मार्च 2026 को अमोरिस लेतिसिया की 10वीं सालगिरह के मौके पर वैटिकन में पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग का आह्वान किया था। यह कार्यक्रम 7 से 14 अक्टूबर तक पॉल शस्टम सभागार में चल रहा है, जिसमें पूर्ण सत्र, सामूहिक कार्य, प्रार्थना एवं कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। सभा पोप लियो 14वें द्वारा अर्पित ख्रिस्त त्याग के साथ समाप्त होगी और इन दिनों में जो सामने आया है उनसे एक सारांश रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पोप ने कहा कि उनके पूर्वाधिकारियों और कलीसिया ने परिवार एवं विवाह के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जारी रखा। जब महासभा के धर्माचार्यों ने आधुनिक दुनिया में कलीसिया के प्रेरितिक संविधान गाउडियम एट स्पेस के भीतर विवाह एवं परिवार की गरिमा को रखा, उन्होंने माना कि पारिवारिक जीवन हमारे समय के महान सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों में प्रवेश का एक विशेषाधिकार प्राप्त बिंदु प्रदान करता है जिसमें लोगों के बीच शांति को बढ़ावा देने का काम भी शामिल है। उन्होंने कहा, आज इन सवालों का एक दूसरे पर निर्भर होना और भी साफ हो गया है। पोप ने समझाया कि परिवार एक ऐसे दृष्टिकोण की कुंजी है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों को एक साथ रखता है और ख्रिस्त में एक विश्वव्यापी भाईचारे की खोज से प्रेरित होता है, इसलिए मीटिंग में एकत्रित हुए लोगों की एक खास जिम्मेदारी है। पोप ने गौर किया कि कलीसिया ने परिवार और विवाह के प्रति अपनी प्रेरितिक चिंता में जिस रास्ते पर चलना शुरू की है उसमें अमोरिस लेतिसिया एक अहम पड़ाव है। उन्होंने सभी लोगों को इस दस्तावेज के नतीजे में पिछले 10 सालों में स्थानीय कलीसियाओं के सामने आई कहानियों, नतीजों और सवालों को साझा करने का प्रोत्साहन दिया। इस सभा के लिए 19 मार्च को अपने संदेश में पोप ने इस बात पर जोर दिया था कि असल में ऐसी जगह हैं और हालात हैं जहाँ कलीसिया सिर्फ लोक धर्मियों और खासकर परिवारों के माध्यम से पृथ्वी के नमक बन सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अमोरिस लेतिसिया हमें इस काम और जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित करता है। परिवार खुद अपने जीवन के आम ताने बाने में प्यार और निष्ठा, देखभाल और माफी, बच्चों की पढ़ाई, विश्वास को हस्तांतरित करने की अपनी कोशिशों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर ध्यान देने और कई तरीकों से अपने समुदायों तथा समाज की सेवा करके कलीसिया के मिशन में हिस्सा लेते हैं।
इन सभी तरीकों से परिवार सुसमाचार की गवाही देते और कलीसिया के जीवन एवं मिशन में योगदान देते हैं। पोप ने आग्रह किया, पौत्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो हुआ है उसे ध्यान से देखने से हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिल सकती है कि मसीह इन सालों में अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, और यह भी कहा कि इससे यह देखने में भी मदद मिल सकती है कि उनकी आत्मा आज कलीसिया को कहाँ ले जा रही है। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड कलाघर 8 से 10 अक्टूबर तक इस्लामाबाद जा रहे हैं। वे वहां राजनीतिक और धार्मिक अधिकारियों तथा देश के धर्मदर्शों से मिलेंगे और फैसल मस्जिद जाएंगे। महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड का पाकिस्तान दौरा आज 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और शनिवार 10 अक्टूबर तक चलेगा। महाधर्मदर्श वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। साथ ही वे शांति और सहयोग के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना चाहते हैं। वैटिकन राज्य सचिव के एक्स अकाउंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार महाधर्मदर्श कलाघर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से मिलेंगे। वैटिकन एवं पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं सालगिरह पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को अपने दौरे के अंतिम दिन वे इस्लामाबाद में फातिमा की माता मरियम के गिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। इसके बाद वे फैसल मस्जिद जाएंगे और धार्मिक नेताओं से मिलेंगे। पोप लियो 14वें ने सिस्टर मेरी तेरेस बैरन को सुसमाचार प्रचार विभाग का सहायक सचिव और परमधम पीठे मिशन सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे अपनी इस नई जिम्मेदारी को 4 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे। वे वर्तमान में मिशनरी सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ अपोसल्स के सुपीरियर जनरल हैं। और आज के कार्यक्रम के अनुसार संत पापा लियो 14वें शाम 6 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए परमधम पीठे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।